0: धातुसँगै किचनका अन्य सामान, गृहस्थी, होटल, रेस्टुरेन्ट, समाजका लागि आवश्यक भाँडाकुँडा चाहिएमा होलसेल तथा खुद्रा बिक्री गरिन्छ। सम्पर्क दुलेगौड़ा मेटल उद्योग, प्रोप्राइटर सूर्य बहादुर बानिया, संगम बानिया। फोन 0564141042, 98563128, 98462014726।
1: हाम्रो प्रतिबद्धता धातुका भाँडा बर्तनको उपलब्धता।
2: स्वास्थ्य क्षेत्रमा सबैको मन जित्न सफल शुक्ला गण्डकीकै पहिलो पोलिक्लिनिक
3: क्लिनिकमा यही चेट नौ गति दोस्रो शनिबार।

0: एहिजेट नौ गते शनिबार
1: पश्चिम मेदिनीपुर क्षेत्र अस्पताल पोखरा में कार्यरत वरिष्ठ पेट मुटु छाती तथा सुगर रोग विशेषज्ञ डाक्टर राजेन्द्र पौडेल,
2: वरिष्ठ हार्ड जोनी तथा नसा रोग विशेषज्ञ डाक्टर मेघराज लामिछाने,
1: नाक कान र घाँटी रोग विशेषज्ञ डाक्टर अम्बालिना साक्य,
2: एनोमली स्कैन र थायराइड सहित भिडियो एक्सरे विशेषज्ञ डाक्टर सन्तोष बराल, साथै दैनिक उपलब्ध सेवा तथा विशेषज्ञहरू।
3: आप सम्मा रेडियो से प्रस्तुत करते हैं।

सम्पर्क काठमाडौँमा होटल टाइटनिक प्रोप्राइटर रामचन्द्र महत 98461168 र दुलेगौंडा ढोरफिर्दी छाब्दी देउराली।

0: पद्मश्री हस्पिटल एण्ड अलाइड साइन्सेस न्यू रोड पोखरामा अब सबै प्रकारको उपचार सेवा सम्भव छ।
1: बाल रोग विशेषज्ञ डाक्टर विनोद तुना छन्। प्राध्यापक डाक्टर वन्दना श्रेष्ठ।
0: स्त्री रोग विशेषज्ञ प्राध्यापक डाक्टर डेला सिंह जोशी। डाक्टर चुम्मया पुन।
1: फिजिसियन तथा पेट कलेज रोग विशेषज्ञ डाक्टर विकास अधिकारी। डाक्टर शंकर बराल।
0: हाड जोड्ने तथा नशा रोग विशेषज्ञ डाक्टर यज्ञमान शाक्य। उप प्राध्यापक डाक्टर पविन थापा र हाड जोड्ने नशा रोग विशेषज्ञ तथा आर्थोस्कोपी सर्जन उप प्राध्यापक डाक्टर सुभाष गुरुङ।
1: मुटु रोग विशेषज्ञ डाक्टर तेज बहादुर गुरुङ। क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डाक्टर ऋषि सेचन।
0: युरोलोजिस्ट तथा मृगौला प्रत्यारोपण सर्जन सह प्राध्यापक

0: ki aralara kutayı neden alın bir şaşkı kutatma da tarif edilmez ve bir dağdaki kutatma da zaten ama artık hanım bana da bir dağın çabuk dağdaki kutatma da bana da bana da bana da bana da bana da bana da bana da bana da bana da bana da आजकल सेवन डा कम सही ना और आम ना बात सही ना गारंटी को गाना नहीं चलती ना था राम रोटी जान को पाए लेने वाले को
1: एक तो समय यूएस सिंगर को फिर से एंड जोर से अपना संगे जाऊँगा तो मैं तो हमने समाज के बारे में बात लाई भांगड़ा को चार और डा जैकेट सिंगापुर के पेटी लेने वाले को गारंटी को गाना देखी सब भाई जात जाति को पोसा के उठते ही छामुनी पाने ठाव भरे को ठीक है
2: Singapore Prince and Jewelers Shop, Muktinath Bank Court, Ghar Mathi, Dhuri Nora.

0: तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो ढोलबाराही 103.8 मेगाहर्ज।
1: सिर्जना बोर्डिंग स्कूल पोखरा को कक्षा 11 भर्ना खुले संबंधी सूचना।
2: सिर्जना बोर्डिंग स्कूल सृजना चोक पोखरा में कक्षा 11 का लागि विज्ञान व्यवस्थापन तथा होटल मैनेजमेंट समूह में नया भर्ना का लागि आवेदन फारम वितरण भइरहेकाले आज भर्ना भई ठुक्क हुनुहोस्।
1: यस स्कूल में विज्ञान विषयसँग संबंधित सबै विषयहरू र अन्य विषयहरूमा होटल मैनेजमेंट टूरिज्म विज्ञान र व्यवस्थापन दुवैतर्फ कम्प्युटर साइंस लगायतका ऐच्छिक विषयहरू अध्ययन गर्न सकिनेछ।

तथा इसी गाड़ी भर बर्बाद गरीने को साथ ही हाइड्रोलिक जैक द्वारा वाल्व को व्यवस्था साथ ही कुछ प्रकार को गाड़ी रिजर्व तथा भाड़ा में चाहिए हमी समझ संपर्क कार्की ऑटो वर्कशॉप एंड कार वाश दुलेगौड़ा प्रभु बैंक भन्दा 50 मीटर तल प्रोपाइटर बुद्धि बहादुर कार्की मोबाइल 98 60 73 73 10 98 261 53 507

0: Bukan nasi.
1: प्रणाम अभी अपने सुनो रेडियो ढोल रहे 103.8 मेगाहर्ट्ज़ अंतर मंडल।

0: भूतवत परिवर्तन सेन्सन सह प्राध्यापक डाक्टर प्रकाश छेत्री
1: मस्कान घाटी तथा थायराइड सर्जन सह प्राध्यापक डाक्टर विकास गुरुङ
0: प्राध्यापक डाक्टर मानस किरण श्रेष्ठ डाक्टर सुमिरन श्रेष्ठ
1: एंथेरियोलॉजिस्ट डाक्टर भूपेन्द्र कुमार तुलाचन प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन उप प्राध्यापक डाक्टर पीयूष गिरी
0: एनेस्थेसियोलॉजिस्ट

0: Assalamualaikum.
1: Oke, belum jam.
0: Bisa, itu kosek dari supaya nanti sekarang dia ngomong. Gue tetap lagi di tengah ngomong sama.
1: Ya, aku sepain ke banar. Hujung gue bener nuka satri. Mereka kucinu. Mejol प्रमाण पत्र बनाएं साथ पत्र पत्रिका पुस्तक कार्यालय का कागज पत्र हरू साथ विजिटिंग कार्ड परिचय पत्र रजिस्टर बैच पुस्तक बिल भरपाई

0: प्रदेश जनस्वास्थ्य कार्यालय तनहुँको जनहितमा जारी सन्देश।
1: This is Radio Dhorbarahi 103.8 MHz.

0: 103.8 अन्तर्मनको आवाज
1: स्टुडियो टाइमचेक अहिले रातिको 9 बज्यो
2: टाइम चेक को साथ में बनकेवा काली का सुन चांदी पसल दुलेगौड़ा हेल्प चोक अपने भवन में छापा वाला सुन का आधुनिक डिजाइन का तैयारी कर गहना राशि अनुसार का पत्थर पाइन अर्डर अनुसार का गहना तैयार गर्नु का साथ ही पुरानो गर गहना नया गहना संग साटफेर पनि गरिन्छ प्रोपाइटर बाजुराम सुनार विनोद सुनार मोबाइल 98165935301

0: एक्सरे तीन थोपलो आठ अंतर्मन को आवाज
1: स्टूडियो अहिले बिहानको पाँच बज्यो।
2: टाइम चेक को साथ में बनकेवा काली का सुन चाँदी पसल दुलेगौड़ा हेल्पोस चोक अपने भवन में छापा वाला सुन का आधुनिक डिजाइन का तैयारी कर गहना र राशि अनुसार का पत्थर पाइन अर्डर अनुसार का गहना तैयार गर्नु को साथ ही पुरानो गर गहना नया गहना संग साठफेर पनि गरिन्छ। प्रोपाइटर बाजुराम सुनार विनोद सुनार मोबाइल 98161 95301।